आइए दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक और उससे बने उत्पाद का उपयोग हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य और बेजवान जानवरों के स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है। आज लाखों लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं गाय भैंस बकरी जैसे चौपाए जानवर मौत का शिकार हो रहे हैं, वो भी हमारी जरा सी लापरवाही के कारण। हम जाने अनजाने ही सही प्लास्टिक की थैलियों में बाजारों से चाय दूध सब्जी या कोई भी घरेलू सामान लेकर आ जाते हैं और उन्हें नालियों सड़कों पर फेंक देते हैं और उन्हें ये बेजुबान जानवर निगल जाते हैं। जरा सोचिए है।

जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा, यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के

जागरूकता, मच्छरों के स्रोतों को नष्ट करने और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत डेंगू के मामलों में जो वृद्धि हो रही है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।

0: मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए कश्मीर की कली फिल्म के इस दो गाने के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे 8 बजे जाते हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल

देखने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश

0: उसमें होगा कि थोड़ा देर से लक्षण आ सकते हैं
1: जी। ये और जहाँ तक हम देखते हैं कि ये जो एक एक तरीके से घातक बीमारी है,
0: बिल्कुल
1: है ना, समय पर इलाज नहीं रहने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है,
0: बिल्कुल।
1: कितने प्रतिशत तक मौत की संभावना रहती है?
0: ऑलमोस्ट

0: और सावधानी बरतने के बाद उन्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है।
1: जहाँ तक कि जैसे किसान हैं तो उनका दिन
0: बिल्कुल
1: रात सामना होता है, या
0: सबसे पहले
1: हम फॉरेस्ट विभाग की अगर बात करते हैं
0: बिल्कुल,
1: तो उनको भी जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है
0: बिल्कुल,
1: तो
0: इन दोनों विभाग और इनको भी ज्यादा संपर्क की वजह से।
1: तो इसके लिए सावधानी के तौर पर हम यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके की सावधानियां उन्हें बरत

0: और सावधानी बरतने के बाद उन्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है।
1: जहाँ तक कि जैसे किसान हैं तो उनका दिन
0: बिल्कुल
1: रात सामना होता है, या
0: सबसे पहले
1: हम फॉरेस्ट विभाग की अगर बात करते हैं
0: बिल्कुल,
1: तो उनको भी जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है
0: बिल्कुल,
1: तो
0: इन दोनों विभाग और इनको भी ज्यादा संपर्क की वजह से।
1: तो इसके लिए सावधानी के तौर पर हम यही जानना चाहेंगे भी किस तरीके की सावधानी है उन्हें बरत, कुछ बुखार वगैरह या ऐसा कुछ आता है?
0: क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं तो लक्षण बहुत अलग अलग तरह के, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी, और कभी किन्हीं बीमारियों में अपने त्वचा पर कुछ चकते, रैश डेवलप होना, इस तरह के अलग अलग हम लक्षण इन बीमारियों में देख

0: लोग बिस्तर पे जानवरों के साथ में रहते हैं, उनका जो उनसे जो हम छू रहे हैं उनको और उन्हीं हाथों से हम कोई चीज़ खा लेते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है?
1: घातक हो सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खाने से पहले हाथ धोएं, ये बहुत ज़रूरी है। भले आपने जानवर को हाथ लगाया हो ना लगाया हो, पर खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साबुन और पानी से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं इतनी सारी हम बातें कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां 150 से ज़्यादा जानवर

दौरान करीब 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। पासधारी लोगों को ही रिफाइनरी के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पचपदरा से रिफाइनरी तक साइकिल से विशेष लोग भी पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने 500 से अधिक साइकिलों की व्यवस्था की गई है। वहीं किसी भी वाहन को रिफाइनरी के अंदर प्रवेश नहीं

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ मैं राजस्थान जोधपुर से महबूब खान बोल रहा हूँ।
0: बोलिए महबूब खान साहब, कैसे हैं?
1: आज आपकी दुआ है कि सर बैंक पार्टनरशिप से बोल रहे हो आप?
0: जी जी

0: आपके ऐसे वार्तालाप हो रहा है।
1: बस ये जी एक बात बताइए, आपके संभाजी नगर में अभी मौसम कैसा है, बारिश वारिश हो रही कि नहीं?
0: बहुत सुहाना है और वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है।
1: क्या बात है,
0: कुछ गर्मी से राहत महसूस हो रही है। मौसम ठंडा ठंडा है, हरियाला सावन छाया है, झाड़ तो ऐसे हल रहे हैं कि मानो कि एसी की और पंखे की आवश्यकता ही नहीं है।
1: जी बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का

और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफर बेहद सुरीला होने वाला है क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं पढ़।

उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे,

स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी।

नाचती थी। तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती।

फेंकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने?

0: बिल्कुल।
1: और इसके साथ ही हमें कचरे का सही प्रबंधन भी करना चाहिए, हर जगह कचरा नहीं फेंकना चाहिए, और गीले और सूखे कचरे को अलग करना, पुनः उपयोग किए की जा सकने वाली चीजों को इस्तेमाल करना
0: और इधर उधर कचरा